इनको भी है मेरा खुमार इनको भी है इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझे दिम सही हा, हा। इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथे।

0: चौथं गाणं, वर्ष 1936, गायन सखावत हुसेन खां, वाद्य सरोद, राग पीलू, तबला गौहर जान ऑफ कलकत्ता यांचे तबलजी फैयाज खां यांचा. सखावत हुसेन खां हे लखनौच्या शाहजहापूर सरोद घराण्याचे गायक होते. त्यांचे आजोबा इनायत अली यांनी 1877 साली सर्वप्रथम विदेशात इंग्लंडमध्ये सरोदवादन केलं होतं. ऐकूया ही ठुमरीची गत. सादर आहे सखावत हुसेन खां यांनी सरोदवर वाजवलेला राग पीलू.
1: नाज़रीन, आज इस फिल्म के साथ साथ वाडिया मूवी टोन आपकी खिदमत में अपना वैरायटी प्रोग्राम नंबर 1 पेश करते हैं. खास आज सखावत हुसैन खां सरोद पर ठुमरी की एक गत सुनाएंगे. हिंदुस्तान भर में सबसे बेहतर सरोद बजाने वालों में से खां साहब एक हैं. कलकत्ते की मशहूर मारूफ गौहर जान मरहूमा के खास तबलिए फैयाज हुसैन खां साहब ने आपका साथ दिया है.

बात पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा ना करो। वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्ला

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम, सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं, फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हरिया

भगवान से बहुत उसकी आभारी हूँ कि ये जो मेरा सक्सेस है इसका मेरे ऊपर कोई बुरा असर नहीं हुआ। हो सकता था ना कि मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता, मैं अपने आप को बहुत समझती, पर मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती हूँ। मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी हुआ उसने चाहा हुआ, जो कुछ भी हमें मिला है वो उसकी कृपा है बस। मैं हमेशा उसके शरण जाती हूँ, सुबह भी मैं प्रार्थना करती हूँ, रात को भी सोने से पहले प्रार्थना करती सोती हूँ।

ये है खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की।

गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

उलझन। सच बन गया अगर उलझन फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता, मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझ दिम सही हा, हा। इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हा, हा।

मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।